और इसी सादगी से ईशान बेहद प्रभावित हुआ। कंसर्ट खत्म होते ही नयोनिका अपनी बेटी के लिए ईशान का ऑटोग्राफ लेने पहुंची। तब ईशान ने सिक्योरिटी गार्ड से उसे अपने वैनिटी वैन में भेजने के लिए कहा। उसे लगा कि नयोनिका उसकी वैन है, मगर जब उसने बताया कि वह ये ऑटोग्राफ अपनी 19 साल की बेटी के लिए लेने आई है तो ईशान हैरान रह गया, क्योंकि असल में वह नयोनिका पर अपना दिल था। अपने म्यूजिक कॉन्सर्ट के दौरान ईशान पहली ही मुलाकात में खुद से 11 साल बड़ी नयोनिका पर अपना दिल हार बैठा, इसलिए उसे दोबारा मिलने की चाह में वह इलाज कराने का बहाना बनाकर उसके अस्पताल पहुंच गया। बिना किसी विशेष सुविधा के नयोनिका

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 10 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: नेपाल ऋण खप्पै बिमगा छ। क्याल्बोलुम प्रविधि से शोभा अल्मोनियम कोटेड सारा थिन रंगीन जस्ता पाता हुलास ब्यूरा कलर छन भन्दा तीन गुना बढी विश्वसनीय प्रतिरोधात्मक थिन लानन टुबमुला
1: तीन गुना लाना टुला
0: हुलास मुसम अर्कु तिल दमाइसे
2: हेलो मर्संग दे एफएम 95 मेगाहर्ज

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक एक बजेको छ.
1: Extreme energy drink. Taste the difference. Feel the energy.

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 4 बजेको छ
1: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रीम इनर्जी ड्रिंक
1: टाइम चेक अहिले ठीक 5 बजे को छ
2: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक टेस्ट द डिफरेंस फील द एनर्जी

0: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टाइम चेक अहिले ठीक 6 बजेको छ
1: एक्सट्रिम एनर्जी ड्रिंक टेक द डिफरेंस फील द एनर्जी
2: मर्सेंग दे पिम 95 मेगाहर्ज 95 मेगाहर्ज